0: आकाशवाणी नागपुर का ये है विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पल में सुनिए हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी।

0: और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती
4: वंदन वार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 178। 6:45 से आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज आप इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुन सकेंगे और यही कार्यक्रम आप संध्या 6:45 पर भी सुन सकेंगे। 7 बजे से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से हम लाएंगे

हम हेरा ही प्यार के। 8 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण समय है 8:15 से और 8:30 से आपके लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रलोक। पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार, आप सुन सकेंगे 9:30 से। 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 11:00 कार्यक्रम का आनंद लीजिए 11:00 से और 12:00 आप सुनेंगे समाचार। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 2 पर सुरीला सफर प्रसारित होगा दिन में 1:00 से और 2:00 से कार्यक्रम त्रिवेणी। दोपहर 2:15 का समय रहेगा समाचारों के लिए। 2:30 से लुत्फ उठाइए गुजरे जमाने के सदाबहार नगमों का और 3:00 का समय रहेगा आपका चहेते कार्यक्रम सखी सहेली का। 4:00 और आज के पिटारा में होगा सेहतनामा, आप सुनेंगे त्वचा रोग और उपचार, डॉक्टर GS मूर्ति से बातचीत। त्वचा रोग के बारे में वो बताएंगे और उसके उपचार के बारे में बातचीत की जाएगी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे 5:00 से और 5:30 से तराने नए पुराने। 6:00 का समय रहेगा समाचारों के लिए और 6:05 से कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग। संध्या रंजन कार्यक्रम होगा 6:35 से। जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 7:00 से और 7:45 से इंद्रधनुष में आज होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कोरा चेक, जी हाँ साथियों, ये नाटिका है जिसे आप सुनेंगे रात्रि 8:00 से हवा महल के अंतर्गत। लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत डी पटेल, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम प्रसारित होगा चित्रलोक और 8:45 से समाचार। आपके लिए कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 9:00 से और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर। रात्रि 10:00 से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। 2 से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के झरोखा के अंतर्गत जानकारी लीजिए। अब सुनिए रामचरितमानस का भाग 178।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ

आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 178। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला को लेकर आज हम फिर उपस्थित हैं। इसकी दूसरी कड़ी आज प्रस्तुत है। कल्पना जी और अनुजा जी एक बार फिर से विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, यति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस कड़ी को शुरू करने से पहले कल्पना जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन सा समय था, वो कौन सी बाध्यता हुई कि महिला रचनाकारों की बंदिशें बनाई जाने लगी, क्यों आवश्यकता पड़ी?
1: बहुत पहले जब गुरु शिष्य परंपरा में तालीम दी जाती थी
0: जी,
1: उस समय घरानों का बहुत बंधन था और गुरु ने सिखाई हुई और उनके घराने की बंदिशों को ही गाया जाए, ये एक नियम था और उसके लिए प्रतिबद्ध थे गायक भी और गुरु भी शिष्य भी।
0: जी जी।
1: तो उस समय उतनी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो विचार ही ऐसा था कि जो गुरु ने सिखाया वो शिष्य गाएं।
0: जी।
1: लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया, सोच में परिवर्तन हो गया, गायकी में भी कुछ बदलाव आना शुरू हुए। हर कलाकार की जो अपनी एक विशिष्ट सोच है, गायकी है, जो उनके मनन चिंतन द्वारा जो वो अर्जित करते हैं उसे एक अलग स्वरूप देने की भी कोशिश होती है। कुछ अलग अलग घरानों या कलाकारों का भी उनकी गायकी पर असर होता है, जो उनको अपने हिसाब से उस गायकी को पेश करने की आवश्यकता या इच्छा महसूस हुई होगी और तभी इस रचनाकार या बंदिशकार के स्वरूप में जो बदलाव आया। और पुरुष स्वर तो हम सुनते ही हमेशा कि वो लोग तो हमेशा ही बंदिशें बनाते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी अपने मन की इच्छा या अपनी गायकी या मधुरता उसके हिसाब से उनको भी कुछ बंदिशों में ऐसा लगा होगा। कुछ साहित्य भी ऐसा होता था पहले
0: जी, जी।
1: कि जो पुरुष प्रधान गायकी भी थी और शब्दों में भी पुरुषों की जो भावनाओं का
0: था उनका ही
1: जी, जी। तो उस हिसाब से महिलाओं को भी ये अंदर से महसूस हुआ कि हमें भी कुछ रचनाएं बनाना चाहिए
0: और उनको भी आजादी मिली इस बात
1: जी, आजादी भी और अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, उस राग की आवश्यकता के हिसाब से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके
0: जी। तो आज की इस कड़ी में क्या डॉक्टर प्रभा अत्रे की चर्चा करना चाहेंगी?
1: जी जी, जरूर। डॉक्टर प्रभा अत्रे एक बहुत ही परिचित नाम है संगीत के क्षेत्र में
0: जी।
1: आपने गुरु शिष्य परंपरा में किराना घराने की तालीम पंडित सुरेश बाबू माने और श्रीमती हीराबाई बड़ोदेकर जी से प्राप्त की। उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी का प्रभाव आपकी गायकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खास करके सरगम का बहुत अच्छा प्रयोगशील उपयोग करके अपनी गायकी को उन्होंने समृद्ध किया है। आपकी गायकी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के गायन का भी प्रभाव उनकी ठुमरी गायन में हमें दिखाई देता है
0: जी। तो आज क्या प्रस्तुत करेंगे, कौन सी बंदिश बताएं?
1: आज एक प्रभा जी का बनाया हुआ एक तराना पेश करेंगे।
0: अरे वाह,
1: जो कि राग मधुवंती में निबद्ध है
0: जी।
1: तो अब सुनते हैं राग मधुवंती का चलन और उसके बाद प्रभा जी ने बनाया हुआ एक तराना। राग मधुवंती एक बहुत ही सुमधुर राग है। इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण गायन समय दोपहर का करीब 12 से 5 बजे तक के बीच में गा सकते हैं। इस राग में गंधार कोमल एवं मध्यम तीव्र लगता है। इसके आरोह में ऋषभ एवं धैवत वर्ज होता है
0: जी।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार।

0: बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया और अब बताइए क्या सुनवाएंगे, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
1: वैसे तो प्रभा जी ने कई बंदिशों का निर्माण किया है, लेकिन आज हम उनका बहुप्रचलित राग मारुबिहाग, उसमें हम आपको एक विलंबित ख्याल सुनवाएंगे और एक द्रुत बंदिश।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें, इस श्रृंखला की ये थी आज दूसरी कड़ी। कल तीसरी कड़ी के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओ नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हसरत जयपुरी के लिखे गीत से, शंकर जयकिशन की संगीत रचना, मुकेश का स्वर। आइए सुने दीवाना फिल्म का ये गाना।

दीवाना फिल्म का ये गाना था, बड़ा ही मीठा और खूबसूरत सा। जैसे खूबसूरत इस गाने के बोल थे, वैसी ही आवाज, वैसा ही संगीत। चलिए एक बार फिर हसरत जयपुरी की रचना सुनी जाए। शंकर जयकिशन का ही संगीत है इस गाने में भी, लेकिन इस बार फिल्म भी अलग, आवाज भी अलग।

0: हमने तो प्रीत निभाई रे, आए ना अब तक बालमा। डाक फिल्म का ये विरह गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। हसरत जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गाना होगा आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में, लेकिन उससे पहले ये संदेश
1: सुनिए।
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना,
2: आ गया है

0: मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: चलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना सुना जाए आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में।

चित्रलेखा फिल्म से हमने ये दो गाना लिया था। आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर थे। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रोशन ने।

इस बहुत ही छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर लेकर कार्यक्रम भूले बिसरे की कुछ और गानों के साथ बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं जे नक्शब का लिखा गीत नाशाद के संगीत निर्देशन में स्वर शमशाद बेगम का।

ला था संगीतकार सी रामचंद्र ने। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसमें हर गीत अपनी एक अलग कहानी कहता है। आइए सुने अगला गाना क्या कहता है।

लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, सलिल चौधरी का संगीत। फिल्म का नाम था दो बीघा जमीन और यही गाना बना आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप जुड़े रहिए, आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, राहुल देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। चलिए अब एक बार फिर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों की ओर बढ़ते हैं।

दिल की बातें दिल ही जाने, यही गाना था रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया ये गाना आपने सुना। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार OP नैयर ने। जी हाँ, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि यहाँ एक छोटा सा अंतराल।

मोम की गुड़िया फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजें थीं। इस गीत को आनंद बख्शी ने ही लिखा था और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पाकिजा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर। कैफ भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने। और यही थी आज के हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सब

0: की निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। तीन स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो तीन, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में तीन मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
2: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता हैं वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
4: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्य भर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा नौगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।

0: प्रदेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
0: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
0: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
0: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
0: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का

0: शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम पश्चिम केरलम तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी दोनों।

0: दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं, फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स। घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस गुफ्तगू को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का अंगना प्यार

छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी खुशियां हैं और

0: छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार नजर लगे ना दुनिया की यूं ही हंसती रहे बाहर मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार छोटा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे मुस्कुराएंगे तो घर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आजादी के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक se.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।

0: विशाल भारद्वाज का ये म्यूजिक था, गुलजार के बोल, उषा उथुप और रेखा भारद्वाज की आवाजों में आपने सुना सात खून माफ फिल्म का गाना। साथियों, आज 4 मई का दिन विशेष है। आज है कोयला खनिक दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन कोयला खनिकों के श्रम साध्य प्रयासों को पहचानना और सम्मानित करना है जो चुनौतीपूर्ण और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हुए ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक कोयले का खनन करते हैं। कोयला खनिक दिवस केवल एक औपचारिक तिथि से कहीं अधिक है साथियों। ये उन गुमनाम नायकों की हार्दिक पहचान है जिनके अथक प्रयासों से भारत में ऊर्जा और उद्योग का पहिया चलता रहता है। और अब हम कार्यक्रम में बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश हो जाए।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक अलग ही खनक है सुनिधि चौहान की आवाज में, और इन्हीं का गाया ये गाना था चमेली फिल्म से। इरशाद कामिल ने लिखा था इसे और संदेश शांडिल ने म्यूजिक तैयार किया था। एक और स्वीट सा ड्यूट आपको सुनवाते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

मीठा संगीत शांतनु मोइत्रा का स्वानंद किरकिरे के बोल थे। शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे पीके फिल्म का गाना। एक छोटा सा अंतराल,

इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
1: अटकन मटकन दही चटकन धम्मड़ दुस्सा ठूंठ गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा।

इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई

0: फिदा हो गया। आगो, आगो, आगो, ये क्या हो गया।
1: यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था। और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत

फिल्म गीत गाता चल का ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म थी तपस्या।

गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था

0: आशु गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

up.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी हिंदी गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत।

नाजिया हसन और निगर से भाई का गाया ये गीत अभी आपने सुना। मिश्र संगीत प्रोग्राम का अगला गीत सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।

0: आजादी के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक se.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।
2: आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मिश्र संगीत के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी हिंदी गीत। लीजिए सुनिए साधना सरगम और साथियों का गाया ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने है और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से। सेंसस 2027।
1: मिश्र संगीत प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। लीजिए सुनिए कलोनियल कजिन्स का गाया ये गीत।

आदि श्रीवास्तव का गाया और संगीत में ढाला ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था श्याम राज ने। अगला गीत सुनने से पहले ही ये संदेश।

0: आजादी के बाद की आठवीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक sec.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुमालती प्रोग्राम में। आपसे करने बातचीत, सुनाने आपको प्यारे प्यारे गीत, कुछ किस्से, कोई कहानी। आज की मधुमालती आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, कल्याणी।

और पश्चिम। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों का गाया इंदिवर का लिखा ये गीत था और संगीत में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, आज 4 मई, आज का दिन अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि मई का महीना है और बहुत तेज धूप भी बढ़ रही है, हम कई बार कई जगहों पर आग लगने की बातें सुनते हैं, देखते हैं, और ऐसे में हमें याद आता है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट यानी अग्निशमन दल। ये दमकल की गाड़ियां लाल रंग की जब घंटी बजाते हुए रास्ते पे निकलती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है, कहीं ना कहीं चिंता सताती है कि कहाँ आग लगी है, कितनी बड़ी लगी है, कितनी हानि हो रही है। तो चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के इस पर्व पर बातें करते हैं आग की, अग्नि की, अग्निशमन की।

क्रांतिवीर फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे गाया था जिगर और साथियों ने। समीर का लिखा ये गीत था और संगीत था सचिन जिगर का। मधुमालती प्रोग्राम में लेने जा रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज की मधुमालती में. आज की मधुमालती आपके लिए लेकर आई हूँ मैं कल्याणी. चलिए करते हैं कुछ बातचीत, सुनते हैं कुछ किस्से, कोई कहानी. आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, हम बातचीत कर रहे हैं अग्निशमन की, अग्नि की, आग की. श्रोताओं, क्योंकि धूप बहुत तेज हो चली है तो कहीं ना कहीं से हम हर रोज़ आग लगने की घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, और ऐसे में हमारे मन में विचार आता है कि ये आग कितना रौद्र रूप धारण कर सकती है अगर उसे समय से काबू ना किया जाए. लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि पहली बार जब आदि मानव को पता चला होगा इस आग के बारे में, इसके रौद्र रूप के बारे में, तो उस पर क्या गुजरी होगी. उसने कभी ना कभी पहली बार जंगल में लगी हुई आग देखी होगी और वो तो भयभीत हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है. लेकिन धीरे धीरे फिर उसने जाना होगा कि आग किस तरह से निर्माण की जाती है, किस तरह से उस पर काबू पाया जाता है, और फिर वहीं से शुरू हो गई आग से इंसान की प्रगति. आज हर घर में किसी ना किसी रूप में इस आग को हम उपयोग में लाते हैं. लेकिन क्या कभी हम इसके इस्तेमाल का विचार करते हैं? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि अगर कहीं से गलती से इसका इस्तेमाल गलत हो गया तो क्या होगा? ज़रूर सोचिए और सुनिए ये अगला गीत. ये अगला गीत है आग फिल्म से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और साथियों ने. शरीम मोहनी का ये गीत, अमर मोहिले का संगीत.

भारत देश में गर्मियों के दिनों में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। आज भी कई शहरों में 45, 47 या उससे भी ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। ऐसे में हम सोचते हैं मानो सूरज आग उगल रहा हो। ऐसे में हम अपने आप का बचाव तो करते ही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस गर्मी के वजह से कहीं आग लगने का खतरा तो नहीं बढ़ रहा। जंगलों में गर्मियों के दिनों में ऐसी आग लग सकती है, और जंगलों में लगने वाली ये आग कई बार बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है, क्योंकि जंगलों में इन दिनों सभी तरफ सूखे पेड़ पत्ते पाए जाते हैं जो इस आग को जल्दी से जल्दी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के जानवर, इनको भी बहुत हानि झेलनी पड़ती है। कई बार जंगलों में लगने वाली ये आग जो है ये इंसान के किसी एक भूल के कारण भी लगती है। तो हमारा ये फर्ज है कि गर्मियों के दिनों में हम ऐसी कोई भूल ना करें जिससे इस तरह से कोई दुर्घटना घटे।

ताल फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले, आदित्य नारायण, ऋचा चड्ढा और साथियों का गाया, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और संगीत एआर रहमान का था। श्रोताओं, मधुमालती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम का अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए कुछ संदेश।

0: आजादी के बाद की 8वीं और पहली डिजिटल जनगणना
1: 1 मई से 15 मई 2026 तक se.census.gov.in पर खुद अपनी गणना करें।
0: फिर 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग फेज में अधिकारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे।
1: तो तैयार रहिए और जरूर जुड़िए इस अभियान से।
0: सेंसस 2027।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की मधुमालती आप सुन रहे हैं कल्याणी के साथ। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे अग्निशमन दिवस की। आग लगने के कई कारण होते हैं, कई बार हमारी गलती से भी आग लगती है। बढ़ता हुआ तापमान यानी टेम्परेचर, ये एक बहुत ही आम कारण है आग लगने का, जिसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से कई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम आग का खतरा दूर कर सके, दूर रख सके। जैसे कि शॉर्ट सर्किट से दूर रहना। कई बार देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट ये बहुत ही आम कारण होता है आग लगने का। तो हम अपने घर की वायरिंग ठीक रखें, अर्थिंग ठीक से किया गया है या नहीं इसका ख्याल रखें। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। और इसी तरह से हम अपने घर में लगने वाले जो इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट्स है, जो सारी चीज़ें घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिक्सर हो गया, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर्स हो गए, पंखे हो गए, लाइट्स हो गए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो हमारे घर में हम रोज़मर्रा

इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अगर ठीक से इस्तेमाल करें, इनका ठीक से ख्याल रखें, अगर कोई गड़बड़ी इनमें हुई है तो वो तुरंत हम ठीक कर ले तो शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है और उससे आग लगने का खतरा भी हम दूर कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूर अपने घर में झांकिए, देखिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और अगर है तो उसे तुरंत ठीक कर लीजिए। और सुनिए ये प्यारा प्यारा गीत।

आशिकी 2 फिल्म का ये गीत था, संदीप नाथ का लिखा, साज और आवाज अंकित तिवारी की थी। अगला गीत सुनेंगे इस संदेश के उपरांत।

0: आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: मधुमालती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती प्रोग्राम से FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर. आज की मधुमालती आपके लिए लेकर आई हूं मैं कल्याणी. और आज मधुमालती में हम बातचीत कर रहे हैं अग्निशमन के बारे में, यानी कि फायर ब्रिगेड के बारे में, क्योंकि आज 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस होता है. तो हमने बातचीत तो ये कर ली कि किस तरह से, क्यों, कब, कहाँ आग लग सकती है. आग तो कहीं भी लग सकती है, लेकिन हम अगर सजग रहें तो उसे जल्दी से जल्दी रोका जा सकता है. उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हमें पता चलता है कि कहीं आग लग रही है, लग चुकी है, तो हमें तुरंत अग्निशमन दल यानी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कॉल करना है, फ़ोन करना है. उनका नंबर होता है 112 112. इस नंबर को डायल कीजिए और बताइए कहाँ पे आग लगी है, किस तरह की आग लगी है. और आपकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से गाड़ियाँ चल पड़ेगी आग बुझाने के लिए. ये लोग आएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन उससे पहले नागरिकों का भी कोई कर्तव्य है जिससे हम इस लगी हुई आग को रोक सकते हैं. जहाँ तक हो सके हम प्रयास करें कि आग अगर कहीं लगी है तो उस पर पानी डालें. अगर कहीं वहाँ पे आपको रेत मिलती है तो रेत डालें. अगर उसके आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो आग जल्दी से पकड़ लेती है तो उन्हें दूर कर दे. इस तरह से हम आग को फैलने से रोक सकते हैं. और जब अग्निशमन यानी दमकल की गाड़ियां पहुंच जाएं तो हमें उनका पूरा सहयोग करना चाहिए. किस तरह से करना चाहिए ये भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक ये प्यारा सा गीत.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मधुमालती में. आज आप मधुमालती सुन रहे हैं कल्याणी के साथ. श्रोताओं, अगर आप कहीं देखते हैं कि आग लगी है और दमकल की गाड़ियां वहां जाना चाहती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस गाड़ी को रास्ता देना चाहिए. जिस तरह से एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए जाती है, उसी तरह से ये गाड़ियाँ भी घंटियाँ बजाते हुए रास्ते से निकलती है. तो हमें रास्ते से ट्रैफिक को दूर करते हुए इन गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए. जिस जगह पे आग लगी हो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना करते हुए जो फायर फाइटर्स है, अग्निशमन दल के कर्मचारी हैं, उन्हें जिस जगह पर आग लगी है वहाँ तक जाने के लिए रास्ता देना चाहिए. और उनके लिए ये सब काम सुकर हो, इस तरह से हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए. अपनी जान हथेली पे ले करके ये लोग आग से खेलते हैं, आग से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें बचाते हैं, तो हमें भी उनका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए. चलिए, क्योंकि आज अग्निशमन दिवस है, आज हम याद करते हैं इनकी जो ब्रेवरी है उसे, उन्हें सलाम करते हैं और सुनते हैं प्रोग्राम का ये आज का अंतिम गीत.

0: आकाशवाणी नागपुर का ये है विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रोग्राम सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से।
1: आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में

0: राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से चार सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

0: दुश्मन फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था जाने दुश्मन फिल्म का गीत और उसकी भी तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: सावन को आने दो, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आनंद कुमार सिंह की आवाज, फौक जामी का लिखा ये गीत था राज कमल की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म फकीरा किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, गीत और संगीत रविंद्र जैन के।

प्यार ही प्यार इस फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म जूली, किशोर कुमार की आवाज, राजेश रोशन की तर्ज, आनंद बख्शी का लिखा यह नगमा है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

सिंगर की गोद में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, उषा तिमोथी और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। विविध भारती से आपने सुना कार्यक्रम

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सरों की झनकार लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओ शुरू हो चुका है विविध भारती का अलबेला कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में, जी हाँ, इस सुरीले सफर में जहाँ गीतों की शक्ल में है थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़े गिले शिकवे, थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी सी तकरार, शब्दों के तालिबानी, कुछ पहेलियां, हमारा और आपका साथ, सब मिलकर चलेंगे इस सुरीले सफर में। लेकिन श्रोताओं, ये तब तक तो संभव नहीं जब तक आपकी बातें हम तक न पहुंचें। तो आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आज की इबारत अब आपके लिए पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, जिंदगी प्यार का नजराना है, किसी से मिलो तो प्यार से मिलो, इन पलों को यादगार बना लें, चलें उन्हीं वादियों में जहां दिल को सुकून मिलता है। वैसे आजकल पहाड़ों की सैर और यहां करवटें लेता मौसम सैलानियों के लिए किसी मीना बाजार की तरह सज चुका है। कहीं मधुवंती और बसंत बहार की तान लिए आम की डाली पर कोयल गीत सुनाती है, जैसे किसी रूठे हुए को मनाती है और पाजेब का नजराना देती है। तो बात इतनी सी है कि ये मौसम भी फूलों से लिखी प्रेम की किसी इबारत की तरह ही होते हैं जो हर पल मुस्कुराते हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज शब्द, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गीत सुनवाए जाएंगे? वैसे जब हम सुरीले सफर की बात करते हैं, और ये कार्यक्रम भी है विविध भारती का बड़ा ही खूबसूरत अलबेला कार्यक्रम सुरीला सफर, तो इस कार्यक्रम में तो बहुत सारी चीजें हैं श्रोताओं जो इस सफर को सुरीला बनाए हुए हैं। जी हाँ, इनमें गीत है, संगीत है, रेडियो भी है, रिकॉर्ड्स भी हैं और रिकॉर्ड प्लेयर्स भी हैं। तो आपकी क्या यादें हैं ये भी आप बताइएगा कि इस सफर को आपने किस तरह से सुरीला बनाया है, क्योंकि आप भी तो गीतों के दीवाने हैं। और प्रोग्राम का ये पहला नजराना आपके लिए, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रफी की आवाज में आन मिलो सजना और फिल्म का ये नजराना था आपके लिए श्रोताओं, और गीतों का नजराना तो हम लेकर आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। और हमने आपसे पूछा है कि क्या यादें हैं रेडियो की, रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड प्लेयर्स हुआ करते थे उनकी, तो अगर आपके जहन में कोई याद है तो आप हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। और वैसे ये सुरीला सफ़र तो तभी सुरीला सफ़र बनता है जब हम और आप मिलते हैं साथ साथ, और होती है एक प्यारी सी मीठी सी इबारत, और होते हैं बहुत सारे नगमे। तो कुछ शब्दों को चुनकर हमारे श्रोताओं ने इसमें चिन्हित किया है और बताया भी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत इस तरह के संकेतों से ही सुरीला सफर का मजा बनता है। जिंदगी, प्यार, मिलन, यादगार, याद, दिल, सुकून, वादियां, पहाड़, मौसम, कोयल, आम की डाली, बसंत, बहार, पाजेब, नजराना, फूल, मुस्कुराना, तो ये सारे शब्द इन्होंने बनाए हैं। एक हमारे श्रोता ने करवटें शब्द जो है उसे कुछ इस तरह से लिखा है कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, इस गीत को इन्होंने गेस किया है। और पल भर में कोई हमें प्यार कर ले, इन हसीं वादियों, पतझड़ सावन, पल पल दिल के पास, तो देखते हैं कि कौन से गीत जो हैं आज आपके गीतों से और हमारे शब्दों से मेल खाते हैं। एक हमारी और श्रोता ने लिखा है कि छम छम बाजी रे पायल या पायल की झनकार, उस रेशमी इस रेशमी पाजीब की झनकार, तो ये गीत इन्होंने जो हैं अपनी तरफ से निकाले हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों की वादियों में अपने प्रीतम के साथ का अनुभव प्रकृति और प्रेम का एक यादगार पल होता है। हरी भरी वादियों में, देवदार के जंगलों में और खिले हुए फूलों में विचरण करना, किसी सपनों को सपने को हकीकत में बदलते हुए देखना जैसा लगता है। ये समय प्रकृति की गोद में एक दूसरे को समझने और नई यादें बनाने का होता है। और फिर इन्होंने हवाओं, बादलों के बारे में भी लिखा है। जी हाँ, मिलना तो बहुत ज़रूरी है श्रोताओ। वैसे हम भी जब कहीं जाते हैं तो किसी न किसी से हमारी मुलाकात ज़रूर होती है। क्या कोई ऐसा वाक्या आपको याद है कि जब आपसे कोई मिला हो और उसे आज तक आप ना भूल पाए हों?

अगर आप बताना चाहें श्रोताओं तो आप जरूर बताएं कि इस गीत में कौन सी अभिनेत्री नजर आती हैं और एक बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की जो घास है वो कौन सी घास है। ही रांझा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कैफी आजमी का लिखा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आम की डाली याद रखने की चीज है। श्रोताओं जी हाँ बिल्कुल, जब हम बात करते हैं सुरीले सफर पर जाने की तो बस वादियाँ हों या फिर जो गांव की वादियाँ हैं वो हों या फिर पहाड़ों की वादियाँ हों, इनमें बहुत ही जो एक अलग सा एहसास है वो होता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसी जगहों पे जब आप सेल्फी लेते हैं तो उन्हें किस तरह से संजोह कर आपने रखा हुआ है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और वैसे हर मौसम अपने आप में कोई ना कोई नजराना हमारे लिए ज़रूर लेकर आता है और तभी तो इसे कहते हैं कि ये प्यार का मौसम है। मौसम चाहे कोई भी हो श्रोताओ, लेकिन चेहरे पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि हंसी खिला जाता है।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर आज पहाड़ियों के पर्यटन क्षेत्र से हो सकता है कुछ बातें मिले इसमें। तो कुछ साल पहले हम नैनीताल गए थे, वहाँ की हसीन वादियाँ, नौका विहार आज भी हमें याद है। ऐसे ही कुछ पर्यटन के स्थान जहाँ आज का ये सुरीला सफर पूरा करने का ऐसे ही वक्त कभी कभी जो है वो मिलता है, और कभी कभी जिंदगी के साथ निभाने वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। मौसम मधुवंती, बसंत बहार के गीत सुनता हूँ, कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये गीत इन्होंने याद किया है। वैसे जो हमने अभी आपको गीत सुनवाया ही रांझा फिल्म का, ये गीत भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। आगे ये लिखते हैं कि ऋतु बसंत की प्रथम कली खुलती है, प्रेम अपनी प्रेतमा के लिए जो है गजरे लाता है, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो मैं लगा दूं। गाँव में दिन भर गर्मी रहती है लेकिन रात को फूल और पत्ते, पेड़, ठंडी हवाएं, तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और हमारे श्रोता ने पसंद किया है जो गीत, जो इन्होंने अंदाजा लगाया है वो है हुस्न पहाड़ों का, शायद ये गीत आज जरूर शामिल होगा। वैसे इस जो लाइन है यानी जो हमारी इबारत है, इसमें हमने दिल की बात भी की है श्रोताओं, जो वादियों में अक्सर रह जाता है। हम तो चले आते हैं लेकिन हमारा दिल जो है अक्सर उन्हीं वादियों में घूमता रहता है, सोचता रहता है उन्हीं वादियों के बारे में। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ ये वादियाँ और भी सुकून भरी हो जाएं, तो फिर कहने ही क्या। और ऐसे में अपने होते हैं, अपनों का साथ होता है।

श्रोताओ, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी एक जगह को चुनिए जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी?

डार्क फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिलो तो प्यार से, फिल्म हीर रांझा का गीत इन्होंने जो है वो उस गीत के बारे में अंदाज लगाया है, और लिखते हैं कि बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गीत है ये, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया, और प्रिया राजवंश और राजकुमार नजर आते हैं, यानी पूरी जो एक डिटेल है वो इन्होंने लिखी है, और कुछ और गीतों को इन्होंने अनुमान लगाया है। आपकी कसम फिल्म का गीत जिसमें किशोर कुमार जी की आवाज़ है, और एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजराना या नजराना भेजा है किसी ने प्यार का, इन हंसी वादियों से हुस्न पहाड़ों का, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, और रूठे रब को मनाना आसान, कोयल क्यों गाए। जी हाँ, तो कुछ कुछ जो गीत हैं वो तो मिल ही रहे हैं श्रोताओं, और आपने बहुत सही बहुत ठीक अनुमान लगाया है कि ठीक है, बहुत सारे गीत का अगर मिलान ना हो पाए तो भी शब्दों को आप बिल्कुल सही परख रहे हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एक हमारे और श्रोता देश परदेश के गीत को जो है वो सोच रहे हैं, और लैला मजनू फिल्म का गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार ये इन्होंने सोचा है और लिखा है इस बारे में। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रूठे हो सनम तो फिर क्या है, रूठे सैयां हमारे सैयां क्यों रूठे, न रूठो रूठो और तुमने किसी से प्यार किया, और भी कुछ एक रूठने से इन्होंने गीत बताए हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पर छोटी सी कविता याद आई है इनको कि जिंदगी प्यार का एक नजराना है, हर मिलन में छुपा अफसाना है, वादियों में दिल को जो सुकून मिले वो मौसम भी जैसे दीवाना है, कोयल की तान में मीठी सी बात, बसंत बहार का रंग सुहाना, फूलों में लिखी हर एक मुस्कान, यादों का प्यारा खजाना, चलो इन पलों को सजा लें हम, हर लम्हा अपना तराना है।

जी हाँ, मौसम आजकल कुछ ऐसे ही करवटें ले रहा है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपने रेडियो के बारे में पूछा है, 1968 में घर में फर्नीचर कैबिनेट की बात इन्होंने करी कि वाला रेडियो दादाजी लाए थे जिसमें बैटरी लगती थी जो एक माह चलती थी। उस पर विविध भारती, सलोन, आकाशवाणी, इंदौर के कार्यक्रम हम सभी सुना करते थे। और एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत था मिलो न तुम तो हम घबराएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड प्लेयर की मीठी मीठी याद है जब शादी या फंक्शन में घर के दरवाजे पर वो बक्सा नुमा भोपू जाता था, उसमें काले तवे के समान जिस पर बैठा स्वान जो मिस्टर वॉयस कहलाया, पीतल की घड़ी नुमा बक्से में लगी रहती थी, उसे घुमाया जाता था तब ये प्लेयर घूमता था। बाद में तकनीक के विकास में वो रिकॉर्ड प्लेयर खूबसूरत बक्से में रेडियो के साथ आ गया, रेडियोग्राम, और घर की शोभा बढ़ाने लगा। मेरे घर में सबसे पहला रिकॉर्ड आया था मदर इंडिया मुगले आजम, और इसमें नई फिल्म आई थी किस्मत, शम्मी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा। फिर कुछ दिन के बाद लॉन्ग प्लेयर आया शोले का, और पाकीज़ा का शोले वाला में डायलॉग सहित रिकॉर्ड आते थे। एक दशक के बाद फिर कैसेट का ज़माना आ गया। जी हाँ, रिकॉर्ड्स की जब आपने बात की है श्रोताओं, तो ये अलग अलग स्पीड के हुआ करते थे, और इनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एक ही गीत के होते थे, और कुछ में 6-7 गीत भी हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी गीत के बारे में, करवटें बदलते रहे, ये गीत इन्होंने जो है वो समझा था कि हो सकता है आज बजे। एक और श्रोता ने लिखा है कि पिछले

बार धर्मपत्नी के जन्मदिन पर मैंने चांदी की पाजेब और चांदी की बिछुड़िया का नजराना दिया था। और कभी कभी ये गीत मैं गाता हूँ धर्मपत्नी के लिए, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तोरा बदन चूमे। तो ये गीत भी है जी हाँ श्रोताओ, बहुत ही खूबसूरत नगमा है और आपने पसंद भी किया है, बहुत ही सुंदर नगमा। और देखते हैं वैसे आज क्या गीत बजता है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं, हमने ये पूछा था आपसे कि आपको अगर किसी एक जगह को चुनना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो शिमला पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मी के मौसम का भी अलग ही अंदाज होता है, कहीं हम सैर सपाटे के लिए निकले तो तरह तरह के फूल नजर आते हैं। आजकल अमलतास के फूल, गुलमोहर के फूल और साल वृक्ष के छोटे छोटे सफेद पुष्प वातावरण को मनमोहक बना रहे हैं। और जनजाति वर्ग के लोग इस समय वनों पर एकत्र करने में लगे हुए हैं, जो इनकी आमदनी का अच्छा स्रोत होता है। वैसे आपके लिए एक बार फिर हम ये इबारत पढ़ देते हैं श्रोताओ, जो आज हमने फेसबुक पेज पर दी है। जिंदगी प्यार का नजराना है, किसी से मिलो तो प्यार से मिलो, इन पलों को यादगार बना लें, चलें उन्हीं वादियों में जहां दिल को सुकून मिलता है। वैसे आजकल पहाड़ों की सैर और यहां करवटें लेता मौसम सैलानियों के लिए किसी मीना बाजार की तरह सज चुका है। कहीं मधुवंती और कहीं बसंत बहार की तान लिए आम की डाली पर कोयल गीत सुनाती है, जैसे किसी रूठे हुए को मनाती है और पाजीब का नजराना देती है। तो बात इतनी सी है कि ये मौसम भी फूलों से लिखी प्रेम की किसी इबारत की तरह ही होते हैं, जो हर पल मुस्कुराते हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर, जी हाँ बिल्कुल सुहाना है, और प्यार हुआ इकरार हुआ ये बातें होती हैं। दीवाना लेके आया है नजराना, ये गीत इन्होंने सोचा और लिखा भी है। ये फिजाएं बुलाने लगती हैं, ऐसे में पहाड़ों का हुस्न उभर कर आता है। अम्बुआ की डाली पर कोयल बोलने लगती है, पतझड़ के बाद बसंत बहार छा जाती है। रेशमी पाजीब की झनकार सुनते सुनते सारी रात वो करवटें बदलते रहते हैं, और फिर रूठे रूठे पिया को कैसे मनाऊं इस सोच में फूलों की रंग से दिल की कलम से संदेश लिख देते हैं, जी हाँ, जो मौसम पर सीधा असर करते हैं।

श्रोताओ, वैसे आजकल आपने कोयल की जो मीठी मीठी सी तान है खूब सुनी होगी। इसके साथ ही एक और पक्षी है जो आजकल खूब बोल रहा है और खूब सुनाई दे रहा है। क्या इस पक्षी को आप पहचानते हैं?

श्रोताओ, जरा ये तो बताइए कि आप मीना बाजार से क्या समझते हैं, क्योंकि आज ये शब्द भी हमारी इबारत में है, क्योंकि लोग छुट्टियों का मौसम है और ऐसे में जो सर्द वादियाँ हैं, जो पहाड़ी वादियाँ हैं, या फिर अपने गांव की सैर पर निकल चुके हैं और बातें करें अगर कुछ ख़ास अंचलों की, तो वहाँ मीना बाज़ार सजते हैं। मीना बाज़ार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्या ये मीना बाज़ार आज भी लगते हैं, इस बारे में हमें बताइए।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: मी कार्यक्रम जागो सुबह हो गई उठती है मेरे साथ और छाया गीत कार्यक्रम के समापन के बाद सोती भी है मेरे साथ, जिससे मैं हर दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ. एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड से जब गीत सुनते थे तो कैसे तू किस समय मैंने सीरीज़ की 320 कैसेट रिकॉर्ड से पुराने सदाबहार गीत भरवाए थे. बाद में 8 सीडी में डाउनलोड करवाए. फिर अब मेरे पास पेन ड्राइव में सेव है सारे गीत इस रिकॉर्ड से. यहाँ तक कि गीतों का जो सुरीला सफ़र है वो तय किया है. एक और श्रोता ने करवटें बदलते रहे इस गीत की बात करी है. और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी इस जादुई और रूहानी इबारत ने फिजाओं में जैसे एक अलग सी मिठाई

आवाज खोल दी है कोयल की कूक और वादियों में सुकून को समेटते हुए मधुवंती और बसंत बहार जैसे शास्त्रीय रागों का जिक्र, साथ ही मीना बाजार जैसी चमकदार दुनिया का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाज रचते हैं जो दिल को छू जाता है। आज इन शब्दों से गीत हो सकते हैं। जिंदगी, प्यार, नजराना, वादियां और तमाम शब्द जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्यार का नजराना, वादियां, सैर, मीना बाजार, बसंत बहार, रूठना, मौसम, फूल, कोयल की कूक, पाजीब आदि शब्द होंगे। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं इस रेशमी पाजीब की झनकार के सदके। वैसे आजकल ये बात भी है श्रोताओं कि देखिए कहीं कोई रूठे ना।

शोभा गुटू की आवाज में ये ठुमरी दादरा आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप आए तो जुड़ना हो रहा है आज। इबारत को पढ़कर आज दिल को थोड़ा सुकून मिला कि आज किन शब्दों से सजे हुए गीत होंगे। आज का सुरीला सफर इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। जिंदगी नजराना मिलो बना चले वादियां, आजकल मौसम करवटें बाजार कोयल सज गीत किसी रूठे पाजीब की बात इतनी अंत में और प्रेम प्यार मुस्कुराहट के साथ समापन होगा। जी हाँ होगा, तो और भी मौसम की भी बातें होंगी क्योंकि हाँ कोई भी मौसम हो श्रोताओ थोड़ा कष्टदायक तो होता है। जैसे बारिश के मौसम की ही बात करें या सर्दी के मौसम की ही बात करें या फिर गर्मी के मौसम की बात करें, लेकिन हर मौसम का अपना लुत्फ है। हमें चाहे ये मौसम अच्छे लगें या न लगें, शरीर को सुकून दें या न दें, लेकिन इस मौसम के बारे में कभी कोयल से जाकर पूछिए, इसके साथ ही जो पपीहे की पुकार है उससे पूछिए तो ये मौसम उनको कैसा लगता है। बड़ा सुहावना लगता है कोयल को। और किसानों से पूछिए जो हमारे लिए मीठे मीठे आम बहुत सारे कह सकते हैं कि जैसे ढेर सी लगा देते हैं। और ये मौसम तमाम खूबसूरत फलों का भी होता है, फूलों का भी होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी पहाड़ों पर जाओ तो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है वादियाँ। वादियों में अजब सा सम्मोहन है जो हमें खींचता है, धुंधली सी वादियों में खो जाने का मन करता है। वादियों में जाओ तो न जाने कितने गीत, जाने कितनी कविताएं मन में बजने लगती हैं। पहाड़ों को कभी गौर से देखा है, प्रकृति के सारे रंग वहीं आकर सिमट गए हैं। जब गर्मी के दिन परवान पर होते तो मौसम की पाजेब ध्यान से सुनिए, इसमें छुपे कलरव और कुदरत के रंग जो होते हैं वो समाये होते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है इस इबारत में शामिल शब्दों में, प्यार नजर आना जिंदगी मिलो चले सुकून दिल जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण परक ही नहीं अभी तो क्रिया परक शब्दों के साथ ही संबोधन भी है। और इस दृष्टिकोण से संभावित गीतों के चयन में ही पूरा दिन क्या और भी अधिक समय लग सकता है, फिर भी जितना समय है देखते हैं कितने लिख पाते हैं। और इसके आगे भी इन्होंने कुछ शब्दों के बारे में भी लिखा है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। जी हाँ, वैसे भी आप देखें श्रोताओं अगर अपने वाक्यों को भी देखें तो जीवन में बहुत सारे वाक्य बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति कई बार कई कई बार होती है।

श्रोताओं, हमने आपसे मीना बाजार के बारे में पूछा था, आज भी लगते हैं क्या ये मीना बाजार कहीं कहीं पर, और आपने क्या चीजें यहाँ से खरीदी हैं, अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। और आपके हालिया सफर के बारे में हमने पूछा था आपसे, यानी कि हाल में अगर आपने कोई सफर

अभिनेत्री रंजिता पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओ। हमने आपसे पूछा था मीना बाजार के बारे में श्रोताओ। जी हाँ, मीना बाजार तो आज भी लगते हैं। वैसे जो मीना बाजार की एक परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है, जो मुगल काल में ही शुरू हुई थी। और यहाँ अगर आप दिल्ली में देखें तो ये बाजार अभी भी लगता है। हस्तशिल्प, अगर कपड़े आप अच्छे अच्छे जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं उन्हें अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। और भी जो देश की हाथ से बनाई चीज़ें हैं वो भी यहाँ मिलती हैं, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी मिलती हैं। और अगर बात करें आगरा

की तो आगरा में भी मीना बाजार लगते हैं और यहाँ पर मिडनाइट बाजार भी लगते हैं। रात में भी शॉपिंग आप कर सकते हैं और बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ बहुत सारे झूले भी लगाए जाते हैं। तो मीना बाजार की अपनी रौनक है। आजकल वैसे छुट्टियों का समय है तो खूब ये बाजार सजे हुए हैं। मौसम कोई भी हो श्रोताओं, प्यार का मौसम होता है। हर मौसम आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर ले आता है और प्यार इसका सबसे बड़ा उपहार है जो अलग अलग शक्लों में होता है।

बताओ, आप चाहें तो इस गीत के कलाकार बता दें और संगीतकार बता दें। वैसे आवाज है मन्ना डे और आशा भोसले की, फिल्म है शायद।

सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत करने के लिए, आपके बातों के लिए, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगु करती मालूम होती है। इस गुफ्तगु को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

0: छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे दुख सुख अपने। जो पल आए हंसता आए लेकर रंग हजार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: पहली। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर, 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आज कर जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी उमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगा। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने

0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से दो के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनोज पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई के हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
1: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएम जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 80 सीट 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेड़े दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमते वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पर नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था।

0: था, उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताओ कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही है। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: कोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में। कैफी आजमी के बोल थे, तर्स थी हेमंत कुमार की। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। तीन देवियां इस फिल्म का गीत है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल।
1: अरे यारूं

हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़क पन्ने।

चाचा चा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही थे आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: दीपा माहेश्वरी।
1: आप सभी को
2: हमारा नमस्कार।
1: कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल अच्छे हैं और आप तो जहाँ जहाँ जाएंगी हम बस पीछे पीछे चलते चले आएंगे।
1: अरे वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि भाई क्या है ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वही चली आती हो। देखो तुम यहाँ पर भी आ गई हो।
2: अभी देखो ना, दोस्ती का प्यार है, आपका अपनापन है और सखी सहेली का कुछ जादू ही ऐसा है, है ना?
1: अच्छा।
2: जिस दिन आते हैं उस दिन बस अपनी जिस सखी के साथ हम अपने बाकी सभी सखियों से मिलने वाले हैं उनका पीछा करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, तो ऐसा पीछा तो अच्छा भी लगता है क्या?
2: हाँ,
1: जहाँ दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, स्नेह हो, वहाँ अगर हम एक दूसरे का पीछा करते हैं तो वो एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो
2: और कभी कभी आप भी तो आती हैं हमारे पीछे पीछे।
1: हम तो रोज ही आते हैं आपके पीछे ख्यालों में, आपने अच्छा? देखा नहीं है। हाँ,
2: तो आज हमें भी ख्यालों में कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब गहराइयों में।
1: हाँ, वहाँ मैं मिलूंगी आपको। हाँ, उस मोड़ पर खड़ी हुई
2: बिल्कुल, और हमारे सारी सखियाँ, हमारे सारे श्रोता भाई सभी से मुलाकात होगी।
1: बिल्कुल होगी। और आज के विषय क्या है ये तो बता दें हम।
2: बिल्कुल, चलिए तो फिर ये जो दुनिया है हमारे ख्यालों की, वहां से हम चल के निकलेंगे दिल की दुनिया में।
1: ठीक है।
2: दिल की माने या दुनिया की, ये बड़ी बात हमेशा कई बार कई स्थितियों में हमारे सामने आ जाती है। दिल कुछ और कहता है और दुनिया
1: कुछ और कहती है,
2: उनके रिवाज कुछ और होते हैं। तो बहुत सारे संदेश आए हैं लेकिन और हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा वाकया भी बताइएगा कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने दुनिया की मानी, या कहीं ऐसा कि आपने दुनिया से हट के अपने
1: दिल की मानी। बिल्कुल।
2: और यहाँ से इस गहराई से निकल के हम एक और गहराई में जाएंगे, वो है कोयले की दुनिया में। कोयला खनिक दिवस है आज, तो क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण और साथ में एक खतरा हुआ लिए हुए ये वाला जो
1: बहुत खतरनाक काम
2: है ना,
1: जिसे करना अंजाम देना बहुत मुश्किल है।
2: जी, कथा सुधा में भी हम कथा सुनेंगे, एक्ट्रेस का भाग 3 सुनेंगे।
1: अच्छा,
2: तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे और बहुत सारे हमारे श्रोता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिर वहां से चलेंगे बिहार।
1: बिहार? अरे क्यों?
2: आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगेगा। लिट्टी चोखा मैंने बहुत समय से खाया भी नहीं है। तो चलो, अच्छा है तुमने लिट्टी चोखा।
2: आप वहां जाएंगे ना तो आपके पीछे पीछे वहां भी हम।
1: वही मैं जानना चाह रही थी कि वहां पर मैं आपके पीछे आने वाली हूँ।
2: ऐसा है?
1: हाँ,
2: तो देखते हैं कौन किसके पीछे है।
1: और इस गीत को भी सुन लेते हैं, देखिए यहाँ कौन किसके पीछे है।
2: चलिए।

0: तो दीपा, अगर हम आपसे पूछे ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तुम क्या कहोगी?
1: आप हमारी सखी हो, आप हमारी प्रिय हो, जैसे हमारी सारी सखियां हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे ही हम प्यारे एक रिश्तों में गुथे हुए
1: हैं,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ही मेहनत कश तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनसे भी हमारा रिश्ता उतना ही गंभीर है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं, और तभी तो आज हम कोयला खनिक दिवस पर बात भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये दिन है एक खास आज का, जो उनको सम्मान करने का दिन है। हम कोयला निकालने में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो खनन में काम करते हैं, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, कोयला खनन कोई आसान काम नहीं है, और खनिक अपना पूरा दिन खदानों से कोयला खोदने और निकालने में बिता देते हैं।
1: बिल्कुल। और 4 मई जो कि आज का दिन है, ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में, सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन रख नहीं दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है, इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है।

0: बिल्कुल, और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है।
1: बिल्कुल, और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का इसका खनन करते हैं और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी, और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है जो कि बहुत जरूरी है, जिससे जिसमें इसमें इसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है, तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं।
1: जी, और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका
0: है, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग।
1: जी,
0: है ना,
1: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ, तो दीपा बहुत ही सुंदर गीत था ये, और
1: जी
0: काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये
1: जी
0: फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो
1: वो
0: काम
1: रहते
0: करते
1: हैं, वो
0: हैं,
1: काम
0: काम
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे
0: श्रोताओं ने
1: श्रोताओं ने
0: लिखी है।
1: लिख
0: एक
1: के
0: श्रोता ये
1: भेजी।
0: भी लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है, और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं, और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है, और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज विश्व आज है खनिक दिवस।
1: खनिक दिवस,
0: हाँ
1: कोल कोल माइनस डे
0: नहीं,
1: इसको
0: बिल्कुल।
1: अंग्रेजी में कहते हैं, और
0: कोयला खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते
1: हिंदी में
0: हैं।
1: कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
0: दुनिया
1: गहराइयों में।
0: में
1: और
0: नहीं,
1: देखिए ना, बात
0: हाँ
1: एक कई बार आ जाती है ना, दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे। है
0: हर
1: ना,
0: जगह है ये जुमला,
1: है ना।
0: हर परिस्थिति मारे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि
1: और
0: दुनिया
1: कई
0: के डर
1: सारे,
0: से। हाँ
1: वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं उस
0: हाँ
1: वक्त।
0: बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है
1: जी
0: दीन
1: जी
0: दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी, बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना,
1: सही
0: और
1: बात
0: कहने के
1: है।
0: बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली, तभी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझकर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए, और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
0: जो बरसों
1: जो
0: हमारे
1: बरसों
0: यहाँ
1: से
0: ढर्रा चल रहा है।
1: चलता
0: अरे
1: आ रहा
0: उसमें
1: है।
0: कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खास तौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
1: सही
0: आप
1: बात है।
0: ये देखिए ना, उसके सपने हैं, अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है, तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
1: सही बात
0: घर
1: है।
0: वाले भी कई बार, हालांकि दीन दुनिया के डर से, वो भी डर के मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना, इस दुनिया

0: क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब
0: दिल
1: दिल की
0: की
1: माने।
0: माने।
1: तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। वैसे हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े, तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई है, वहां आप बड़ों की बात को ले सकते हैं। उनका कोई पुराना अनुभव है, उससे आप कुछ सीख लेकर करके
0: बिल्कुल
1: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
0: काम कर
1: और
0: सकते
1: काम
0: हैं।
1: कर सकते हैं।
0: हाँ, मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
1: जी
0: ना।
1: जी
0: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया, आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपने
1: जी
0: पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं,
1: जी
0: है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं, लीक से हटकर हो आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
1: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है, ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि एक पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
0: जा रहे थे
1: देश घूमने के लिए निकले थे। कभी
0: जी
1: बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है
0: अब
1: और
0: बेटा पैदल
1: बेटे
0: चल
1: को
0: रहा है
1: पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पर बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
0: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में ये गाना है ना, दुनिया का ले लो
1: ले लो
0: मजा,
1: मजा,
0: दुनिया
1: दुनिया
0: तुम्हारी
1: तुम्हारी
0: है।
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी
1: जी
0: हो गए हैं,
1: हाँ
0: हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है, देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती है,
1: जी
0: उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की
1: बिल्कुल।
0: चिंता ही नहीं है।
1: ये बात कहीं ऐसा नहीं है कि छोटे शहर, सब जगह है
0: सब जगह है ये, हर
1: जी।
0: जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए हैं ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब
1: बिल्कुल।
0: बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना यह है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और वही एक और संदेश आया है, ये कहती है कि जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही है कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं, जहां पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है।
0: बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर है कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले।
1: चलिए।
2: अरे चुपके से दिल दे दे
3: नहीं ते
2: नहीं ते

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गए।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले इतनी दूर, भेजोगे तो कैसे क्या होगा, पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते
1: सारे हैं। और कभी कभी कोई एक लीक से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन
1: लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसके दिल की सुनिए, अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने बच्चे का या
0: विश्वास
1: पर विश्वास कीजिए।
0: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है, वो कैमरा लेके जाती है, घूमती है, दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है।
1: हाँ। और ये बात जहां पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है, हम इस बारे में बात और आगे करेंगे।
0: हाँ, अभी वक्त है एक अंतराल का।
1: जी।

0: बात हो रही थी कि जहां पर दो बच्चियां होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहां सिर्फ बच्चियां होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
1: बहुत दिक्कत आती है उनको माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं, जो आप पर नजर है उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो, लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
0: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल के माने या दुनिया की, भाई समय समय पर दोनों के मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए, आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया के सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल के सुने। जो सही होगा जीवन
1: डिसीजन लेना बहुत जरूरी, वही कहा ना विवेक से काम लेना होता है
0: जी।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहां दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकती है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहां दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
0: सही कहा आपने।
1: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
0: जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3।
1: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
0: चलिए,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
4: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत दिए थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे, वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दे या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दे। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
5: मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
4: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही।

0: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
1: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगार दान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुभ्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है।
2: उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी। कभी नहीं, कभी हृदय ने उसका तिरस्कार ना किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूं? हाँ, अवश्य बना सकती हूं। क्यों नहीं बना सकती? इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूं? ढलते हुए सूर्य में मध्यान्ह का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं बना सकती। आह, ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है? अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह।
1: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी चार दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
2: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ

0: साथ छल नहीं कर सकती, नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
1: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
0: हाँ नहीं नहीं जरा भी भूख नहीं है। सुनो ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
0: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना?
2: अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
1: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे, केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
0: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
1: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहां थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहां? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
0: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी, सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। हाँ ऐसा ही करती हूँ।
1: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया,
0: कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
1: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
0: ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। कुछ अनिष्ट हो सकता है, ऐसा करती हूं पत्र लिखती हूं।
1: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
0: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे, और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना, और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूं। हां केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ लिए जाती हूं, और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं मेरी तलाश न करना, मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी।

0: के लिए छोड़े जाती हूं। हां, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ लिए जाती हूं और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना, मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा।
0: माझी, उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए, नाव न जाई।
0: हाँ, रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा?
1: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई है?
0: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए, कौनो सवारी शिकारी न मिली।
0: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो।
1: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।

सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो दीपा, कहानियां तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती
0: है। हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहां दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है, समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, एक संदेश ले ले क्या दिल की मानी,
0: हाँ वही तो।
1: है ना? तो ये संदेश कह रहा है कि
2: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते? मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ, लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर।
2: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई

0: ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की यह तय करना कठिन हो जाता है, तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय लें। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
1: बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग दुनिया का अनुभव का स्टेयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
0: बिल्कुल, यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें।
1: बिल्कुल, अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
0: चलिए,

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे।

0: तो दीपा, अब हम बिहार की सैर पर चलते हैं।
1: चलिए।
0: देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का जो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ की एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुंच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत। और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए, जहाँ होटल की थाली के 200 देना पड़ता था मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
1: क्या बात है भाई। अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंद लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी
0: बनाते हैं।
1: अच्छा। उसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उस पे भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो
0: अच्छा,
1: बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
0: निकाल लीजिए।
1: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा

0: करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीजों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी के, लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चौका रखिए। चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
1: ये आपका अपना स्वाद है।
0: हाँ, ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहे वैसे इसको
1: बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
0: बिल्कुल, चलिए पक्की बात।
1: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत।
0: चलिए।

0: हाँ तो दीपा, सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ,
1: स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से, कैसे, कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
2: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझिए लीवर में समझिए छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है। और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करता है। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो है ही उसका काम। तो इट इज गॉट अ मल्टीपल फंक्शन एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है। जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लीवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
1: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद इतना विस्तृत विषय है तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वही हो सकता है।
1: कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है।
2: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
1: पीली
2: या फीकी दिखाई देती है। जैसे फीकी जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है
1: जी।
2: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
1: नाम
2: हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देयर आर अदर डिसीजेस जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं, एलर्जी कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर के प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देयर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते हैं,
1: गमोरिया
2: उसको ही मलेरिया बोलते हैं। तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझिए स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है, विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है। आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा वो भी।
1: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं,
2: दाग भी आते हैं चमड़ी पे।
1: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते हैं लोग उसे सफेद दाग जैसा समझने लगते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती
2: है? देखिए क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है। हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता, कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की 3-4 वजह है, एक तो लेप्रेसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन, ये 3 मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफेद चमड़ी आती थी, और तभी के जमाने में पहले, मैं तो बोलूँ 50-60 साल 70 साल पहले, इसका इलाज इतना नहीं था। ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और
1: ईश्वर का क्रोध
2: समझकर उसको थोड़ा सा उस

0: से ये सफेद दाग सभी उसी नजरी से देखने लगे लोग अभी
1: जी।
0: वेदर इट इज विटिलिगो जो सफेद दाग की बीमारी है,
1: ये विटिलिगो को थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ,
0: विटिलिगो
1: सफेद दाग
0: ही बोलते हैं, जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं उसमें, तो मेलानिन जो रहती है जो कलर बनाने की पेशी है वो कम काम करती है बस, जैसे हमारे सफेद बाल हुए ऐसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो विटिलिगो। लेकिन लोगों के नजर में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये किसी इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे में।
1: हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो विटिलिगो।
0: वो नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन एल्बिनिज्म, अलग है वो, उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज है। पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, वो एल्बिनिज्म है, पूरे शरीर उनके मतलब पुतली भी व्हाइट है, बाल भी व्हाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफेद दाग की बीमारी जो कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो वैसा नहीं है। लेप्रेसी अलग चीज है, कोड अलग चीज है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं, सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। मैंने जैसे बताया सफेद बाल जैसी चीज है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दिखने में वो सफेद दिखता है। और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफेद दाग की बीमारी है जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
1: किस तरह का नुकसान होता
0: है? ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझे स्किन में जब वो सेंसेशन को लॉस होते तो जख्म हो जाता है, जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्ट्रोक के जैसे हाथ वगैरह एब्जॉर्प्शन गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़िया आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
1: मवाद और ये सारी
0: टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा, तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है ये लेप्रसी के जो।
1: अब लेप्रसी का इलाज कहां?
0: लेप्रसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। ये जो लेप्रसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो
1: अनियता
0: है वो उसके वजह से, हाँ उसके वजह से ये सफेद दाग
1: गलत
0: नजरों से देखा जाता है। तो सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है, बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी चल
1: जो फंगल इन्फेक्शन है
0: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
1: ठीक होता है, लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
1: प्रॉब्लम नहीं,
0: लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है, इलाज तो करेंगे लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
1: जी जी
0: कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं, दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुट अप करूं तो लोगों के मन में सफेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रसी, वो लेप्रसी तो नहीं है, करते करते सब सफेद दाग को लेप्रसी के नजरिए से देख रहे हैं, अभी जो सफेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिगो की वजह से हो वही चीज में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पोर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है,
1: तो सर नजर का टीका
0: हाँ कितना भी काला दाग होने दीजिए, आप चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सफेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है,
1: धारणा
0: निकलनी चाहिए। कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए, और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो से कुछ नहीं होने वाला।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोड ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत मैं एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूं, कोई म्यूजिकल तरीका है भी होता है?
0: म्यूजिकल तरीका तो गाना सुनना ही है, तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: कौन सा?
0: दिलवाले फिल्म का गेरुआ सुना दीजिए।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे, जब मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था, सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा।
0: यस, अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए, आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो। अब डॉक्टर साहब, बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है, हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ व पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें होती हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी?
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं एकदम ही स्ट्रांग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्माटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीस है, हालांकि हर्पीस तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीस भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है?
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं,
0: और अगर
1: कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूं, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स, तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्माटाइटिस, या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो वाली चीजें जो समझिए हम, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इरिटेंट डर्माटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरी चीज की, और इरिटेंट डर्माटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया, आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हमने ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो, सो दैट्स एन इरिटेंट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइज की हो सकती है, हेयर डाई।
0: डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय ये अब यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
1: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: चलिए ये जूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तू ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायामाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
0: उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती।
1: उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
0: जी।
1: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलीन डायामाइन की एलर्जी होती है
0: जी।
1: ये जो

0: एलर्जी होती है, इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई लाइट डाले तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
1: भले उसका आंखों से कांटेक्ट
0: ना हो तो उसके आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना। हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस, बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यू एलर्जी है तो पेशेंट दो तीन बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
1: जी।
0: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइस है, बहुत सारी अलग है।
1: और ये जो माथे का काला होना
0: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
1: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं?
0: वो ठीक कर सकते हैं मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग
1: जी।
0: हाँ, बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है। शरीर भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है खुद का अंदरूनी, अगर हम छेड़े नहीं तो शरीर अपने आप काम करने लगता है, बट शरीर की एक क्षमता होती है उतनी देर तक ही कर सकता है। तो हम जो है उनको असिस्ट करेंगे और वो कलर जाने में मदद करेंगे, लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हेयर डाई के में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन आई फील, सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी? तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। फॉरेनर्स लोग सफेद बाल लाते हैं तो हम तो खुश होते हैं, हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर माने जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की वोट निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विद अवर बॉडी, अवर कलर, अवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुए चीज है, तो उसको जरा
1: खुश होने की बात हम और भी करेंगे। फिलहाल एक खुश होने का एक और नुस्खा है,
0: इसके लिए एक गाना होना चाहिए, डियर जिंदगी वाला, लव यू जिंदगी।

0: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो,
1: सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत होजिए, और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे, सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट। फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की क्षमता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल, ये फिटनेस नहीं होती है
0: जी।
1: फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां तो उसको और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा।
0: फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब, अब असंतुलित जीवन जीता है उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा, त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है?
1: त्वचा भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, और अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट, तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाता है 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है, ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियां पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन का परेशान चेहरा ही दिखेगा, और रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चली जाएगी। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए, ग्लो चाहिए, उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए, बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए,
0: और नीचे कालापन आ जाता है।
1: यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं, और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे अपने आप को।
0: कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है
1: या
0: उसके लिए फिर वो क्या कर सकता
1: नहीं
0: है?
1: कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप, एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है, तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है, तो धूप में जो काम करता है उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है।
0: स्किन कैंसर, ये एक बड़ा अलग सा शब्द है।
1: यस,
0: स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर स्किन से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं
1: आपने ये क्या हो रहा है ना, ये कैंसर शब्द सुनते ही कुछ एक डर पैदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर्स। जैसे अभी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है, जहां पे हुई वहीं पे इफेक्ट करती है। मैं आई डोंट नो व्हेदर आई एम पुटिंग इट राइट, जहां पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ
0: जी,
1: स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी जगह को अफेक्ट करता है, न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा, इतना नहीं फैलता है। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक एक

0: इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है, मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर,
1: तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है
0: वो डैमेज, फिर अंदर गया तो लिवर में, सर जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो कैसे फैलती है वैसे, एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है।
1: ओके,
0: और भी एक हाथ दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर है ये फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहां पे उनकी जो स्किन टाइप है टाइप 1 टाइप 2 मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ, सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन आवर स्किन।
1: विदेशों में
0: उनका जो सन बात लेने का आइडिया ही डिफरेंट है, वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है, उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी तो आते हैं आराम से कपड़े पड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सन बात लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं।
1: चलिए इसी विषय पे अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन फिलहाल एक सुरीली सी किरण की जरूरत है इस समय।
0: दिल धड़कने दो का वो गाना सुना दीजिए,
1: गल्ला गुड़िया।
0: हाँ हाँ
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की।
1: यस,
0: लो हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा है।
1: सुंदर दिखने के लिए मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा
0: जी,
1: सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन द कलर ऑफ इट।
0: तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो कि जिससे हम गोरे हो जाएं।
1: अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूं ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए मैं गोरा होना चाहता हूं।
0: कितने समय तक असर में रहता है?
1: जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारे शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई।
0: हाँ, अलग अलग जो त्योहार आते हैं चाहे वो दिवाली हो, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कॉन्टेक्ट आपके स्किन से है, रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर, तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है, दूसरा होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है। कलर दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर्स हवा में उड़ती है अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके अस्थमेटिक पेशेंटों को ज्यादा तकलीफ देगा, खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी, फिर लाली होगी और स्किन पीलिंग होने लगेगा।
0: वो क्योर हो जाता है?
1: वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जला हुआ स्किन जैसा हील होगा, 10-15-20 दिन लगेंगे
0: जी।
1: अपने आप हीलिंग प्रोसेस होगी, फिर दाग भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है। जख्म जैसी बात है, ये
0: वेल्डिंग कर रहा है बंदा उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड यूज करते हैं।
1: वेल्डिंग का तो क्या है ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो, इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स, बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है।
0: और जब बात हमने होली की है
1: तो आज तो
0: एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि आज
1: नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कटी पतंग वाली आज नहीं छोड़ेंगे।

0: तो डॉक्टर साहब ये होली तो इन्होंने मना ली, चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा?
1: आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूं तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है, हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी, यू नो, द स्किन इज मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे? आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे हैं बाइक वगैरह जाते हो तो एक अच्छे से जैकेट या
0: चेहरे पे भी कुछ
1: ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज़ है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है जो धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो जितना हो सके उतना धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए या कुछ मास्क डाल लीजिए।
0: तो डॉक्टर साहब आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं था, छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, अभी आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है?
1: धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के, हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है, 30-50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर की क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है।
0: दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी जरूरी है और किन किन चीजों से जरूरी है।

0: ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से आपने सुनी। और अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना सुन ले, समय तो हमारे पास ज्यादा है नहीं।
1: ये सुल्तान पिक्चर का जग घूमिया हो जाए।

तो दोस्तों, जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि गाने से पहले डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को निष्फिक्र रखते हुए मजे से जग

0: घूमिए। और अब फिलहाल लोग साहब आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलत फहमियां दूर हुई होंगी और बहुत सी उपयोगी चीजें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए।
2: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमर कांत दुबे और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

शाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।

रोए मेरी मोहब्बत।

पागलों की तरह जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन

0: जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन की

नकली है बिल्कुल झूठी, इनसे की जितने शादी उसकी तो किस्मत फूटी। दूर से इनको टाटा करना कर हो जान बचानी, फैशन की दीवानी एक गुड़िये है जवानी। अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तान, बोलो बोलो बोलो बोलो।

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी।
1: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

0: प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: भुस भर दिया अयो, भुस भर दिया मेरी चाहत में,

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान। घर मिलता नहीं सब लोगों को, ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर। बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर, ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें, प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने। आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: जाना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
0: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
0: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
0: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
0: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
0: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: तराने नए पुराने
1: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे, FM बँड 100.6 मेगाहर्ट्सवर। 6 वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या आम्ही सहक्षेपित करू काही क्षणातच।

के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है। इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। AIUDF रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।

0: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है. अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है.
1: केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं. कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है. कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है. उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है. सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली है, 2 पर आगे है. उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती है और 1 पर आगे है. केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है. भाजपा ने 3 सीट जीती है. उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है. टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली है और 51 पर आगे है. एआईएडीएमके को 4 सीट मिली है, 41 पर आगे है. पीएम के 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है. पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है. निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है. भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है. एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं. बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ. निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ. मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा. मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है. दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या. आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे. ठळक बातम्या. 5 राज्यांच्या निवडणुकांचे कल स्पष्ट. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपाची विजयी आघाडी. तामिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीकेची बाजी. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित युडीएफ तर पुदुचेरीत स्थानिक एआयएनआरसीला सत्ता. राज्यात बारामतीच्या पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार 2,18,000 इतक्या विक्रमी मताधिक्यानं विजयी तर राहुरीत भाजपाचे अक्षय कर्डिले विजयी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील प्रस्तावित अतिवेगवान आणि सर्वाधिक वर्दळीच्या मार्गिका तसंच राज्य बीओटी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा घेतला आढावा. आणि विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यात आज आणि उद्या वादळी पर्जन्यमान. आता सविस्तर बातम्या. 4 राज्य आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील मतमोजणीमध्ये सुरुवातीला दिसून आलेले कल जसजसा मोजणीच्या फेऱ्या पुढे सरकत आहे तसतसे कायम दिसत असून ताज्या मतमोजणीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये भाजपानं निर्णायक विजयी आघाडी घेतली आहे तर तामिळनाडूमध्ये अभिनेता सी जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमेगा वेट्री कळगम टीव्हीके या नवख्या पक्षानं जोरदार मुसंडी मारली आहे. इथं विरोधी पक्ष असलेला एआयएडीएमके दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तर राज्यातील सत्ताधारी पक्ष डीएमके तिसऱ्या क्रमांकावर पिछाडीवर आहे. आसाम आणि पुदुचेरीमध्ये सत्ताधारी पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या तयारीत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला प्रचंड जनादेश मिळण्याची चिन्ह असून एकूण 293 विधानसभा जागांपैकी आतापर्यंत 11 मतदारसंघाचे निकाल हाती आले आहे. भाजपनं 9 जागांवर विजय मिळवला आहे तर तृणमूल काँग्रेसनं 2 जागा जिंकल्या आहे. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या 282 जागांच्या कलानुसार भाजप 191 जागांवर आघाडीवर आहे तर तृणमूल काँग्रेस 85 जागांवर, काँग्रेस 2 जागांवर आणि इतर 3 जागांवर आघाडीवर आहे. अभिनेत्यापासून राजकारणी बनलेल्या विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळगा वेट्री कळघम टीव्हीके हा पक्ष आपल्या पहिल्याच निवडणुकीमध्ये तामिळनाडू विधानसभेत इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. राज्यातील एकूण 234 मतदारसंघांपैकी 107 जागांवर आघाडी घेत हा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार विद्यमान मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन हे टीव्हीकेच्या उमेदवारापेक्षा पिछाडीवर आहे. सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम डीएमके पक्ष 55 जागांवर आघाडीवर आहे आणि त्यांनी एका जागेवर विजय मिळवला आहे तर त्यांचा प्रतिस्पर्धी पक्ष

0: मैं
1: हाँ
0: नेत्रा खेड़कर, मैं आज अपना सुंदर अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे ऑल इंडिया रेडियो में आने और इस विषय कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होना हम सभी के लिए बहुत खास अवसर है। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। इतने लंबे समय से ऑल इंडिया रेडियो देश भर के लोगों तक समाचार, संगीत, संस्कृति, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता आ रहा है। इसने अनेक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है और लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे महान और प्रतिष्ठित संस्थान के 90 वर्ष पूरे होने के समारोह में शामिल होना मेरे लिए एक यादगार पल है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा। इस अवसर ने मेरे आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। मैं ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में हमेशा शामिल रहेगा।

नमस्कार, मेरा नाम आदित्य रघटाटे है और आज आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के इस खास मौके पर यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि देश की असली आवाज है, जो हर घर और हर दिल तक पहुँचती रही है। इसने सालों तक लोगों को जोड़ा है, उन्हें सही जानकारी दी है और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। आज भी इतने बदलाव के बाद आकाशवाणी का विश्वास और पहचान उतनी ही मजबूत है, जो सच में प्रेरणा देती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की पहचान है। अंत में मैं ऑल इंडिया रेडियो का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया। धन्यवाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मेरा नाम आर्या वर्षा नागेंद्र राव है। जैसे ही मैं यहाँ पे आई मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं बचपन में हमारे पास कुछ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता था, तब हम सब बैठ के रेडियो सुनते थे हमारे खाना खाने के पहले। तो जैसे ही मैं यहाँ आई मैं काफी नर्वस थी, पर जैसे ही मुझे अतुल साखरकर सर का, विजय राजपूत सर का सपोर्ट मिला तो मुझे ये अपना घर सा लगने लगा। आज भी मैं दूसरी बार यहाँ पे आ रही हूँ बट मुझे अब इतना डर नहीं लग रहा है, मुझे ये अपना घर सा लग रहा है। तो ये काफी एक अच्छी जो फीलिंग है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो एक कनेक्टिविटी एक रेडियो रखता है, ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रख ही नहीं सकता, ये मैं बोलना चाहूंगी। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और इनका अभिनंदन करना चाहूंगी ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होने का, और इस खास अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इससे अच्छी बात तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। सो थैंक यू सो मच।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत के साथ। पहला गाना हमने लिया है फिल्म योद्धा से, इसे गाया है बी प्राग ने। गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत तनिष्क बागची का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

0: कटपड़े भारतीय सेना।
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में प्यार का साया फिल्म का गाना। समीर ने इसे लिखा है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

कार्यक्रम का अगला गीत क्रिमिनल फिल्म से है, इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत इंदिवर का है, संगीत MM करीम का।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद जयमाला कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं राखी और हथकड़ी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम नागपुर, एंड हमारी एक नेशनल बॉडी है जिसका नाम है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, विच इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्ट हूँ और मुझे बड़ा आनंद होता है यह बताते हुए और यह सुनते हुए कि ऑल इंडिया रेडियो का हमारे 90 वर्ष पूरे हुए हैं उसके साथ में. और मुझे तो जहां तक याद है, जिस दिन से मैंने होश संभाला है उस दिन से मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनते आ रहा हूं. मुझे अच्छे से याद है कि हम बचपन में बेला के फूल कार्यक्रम सुना करते थे और उसके बाद ही हमें नींद आती थी और दूसरा उस समय कोई साधन नहीं था. तो इससे जुड़ा हुआ तो बचपन से हूं, हमारे चाहे वो स्कूल डेज हो, बचपना हो, कॉलेज डेज हो और पढ़ाई हो. पर उसके बाद जब से मैंने डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस चालू करी है और जब से करियर चालू किया है, तब से एजुकेशन वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड इट वॉज ऑल इंडिया रेडियो जिसने कि प्रोएक्टिवली हमारे कम से कम 25 वर्षों से, 2001 या 2000 से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे मुझे याद है कि पहला कार्यक्रम हमने लिया था उसका नाम था जीवन के रंग मधुमेह के संग. और हमने यह कार्यक्रम लगातार कई वर्षों तक और आज भी उसे हेलो डॉक्टर के नाम से हमने 25 वर्षों से चालू रखा है. और इसका मेन उद्देश्य है पब्लिक को अवेयरनेस करना. और मेरे ख्याल से नागपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां हमने यह कार्यक्रम पहली बार पूरे देश में लाइव फोन इन प्रोग्राम ऑन हेल्थ ऑन डायबिटीज चालू किया था. यह पहला स्टेशन है. और उस समय भी मुझे अच्छे से याद है कि हमें बॉम्बे ऑफिस से और दिल्ली ऑफिस से भी परमिशन लेनी पड़ी थी और यह कार्यक्रम शुरू किया था. और वह कार्यक्रम आज की तारीख में पूरे देश में और पूरे विश्व में बड़े नाम कमा रहा है. अलग अलग प्लेटफॉर्म से जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जाता हूं तो एक स्लाइड जरूर से दिखाता हूं कि देखिए हम ऑल इंडिया रेडियो से यह कार्यक्रम करते हैं और यह जागरूकता का अभियान पूरे देश में कहीं ना कहीं लाके हम इसका एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे. और इसमें जिससे जो जागरूकता लोगों में बढ़ी है उससे डेफिनेटली लोगों में कॉम्प्लिकेशंस कम हुए हैं, लोगों में डायग्नोसिस समय पर हो रहा है और उससे उनके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियां आ रही है और हम उन्हें स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह कार्य आगे भी इसी तरह चलता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं और बधाइयां ऑल इंडिया रेडियो को.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है, एफएम बैंड 14.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम हवा महल सुनिए मुंबई केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका कोरा चेक। लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत डी पटेल और निर्देशक हैं पुरुषोत्तम दारवेकर।
1: राम राम राम, क्या जमाना आया है। ये आजकल की संतानें तो बिल्कुल बेशर्म हो गई हैं। दो अक्षर पढ़ जो लिया, दृश्यता की भी कुछ सीमा होती है।
2: क्या बात है, सुबह सुबह किस पर बिगड़ रहे हैं आप?
1: तेरी लड़की पर। मैं कहता हूँ, ऐसी बात मुझसे करने मुझे शर्म नहीं आती? बाप बेटी के बीच से मर्यादा का बंधन ही तोड़ दिया।
2: लेकिन हुआ क्या, उसने कौन सी मर्यादा का बंधन तोड़ दिया?
1: वो कह रही है कि हम यदि विवाह के लिए दबाव डालेंगे तो विवाह ही नहीं करेगी।
2: हाय राम, न लाज न मर्यादा, पिता के सामने ऐसी बात करती है, उसे शर्म नहीं आई? मेरी मानो तो अब उसकी शादी कर दो, जवान बेटी को कब तक कुंवारी रखेंगे। लड़के का जीवन तो पीतल के लोटे की तरह है, दाग भी लगा तो मांझने पर साफ हो जाता है। अच्छा सुनो तो, रेखा के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है, वो लोग सर्व संपन्न भी हैं।
1: तुम जो लड़का बता रही हो वो तो बिल्कुल बुद्ध राम है, न पढ़ाई न रूप रंग न व्यवहार।
2: लड़कों का रूप रंग थोड़े ही देखा जाता है, हरा भरा घर रहे तो कई लड़कियों वाले टूट पड़ते हैं।
1: लेकिन उसका बाप भी तो एकदम मक्की चूस है, और विवाह भी सादगी से करेगा, फिर समाज में हमारी प्रतिष्ठा क्या होगी।
3: करोलीमल जी,
2: लो तुम्हारे दोस्त हजारीमल जी आए हैं, मैं अंदर जाती हूँ।
3: जयराम जी की, करोलीमल जी।
1: जयराम जी की।
3: क्या हुआ, किसने आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित किया, क्या आपकी बेटी किसी के साथ?
1: खबरदार हजारीमल, जो मुंह में आए वैसे बक देते हो, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी, करे कोई दुश्मन की बेटी।
3: अरे लो भाई, आप तो सचमुच ही गुस्से में आ गए। अरे बाबा, आप ही ने तो प्रतिष्ठा के कलंकित होने की बात कही थी, जमाने की हवा ही ऐसी है।
1: देखो, फिर कभी ऐसा शब्द निकाला तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम किस काम के लिए आए हो?
3: मैं आपके स्नेहल के लिए एक बात लेकर आया हूँ, बोलो आपका क्या विचार है?
1: तुम्हें तो मालूम है कितना कष्ट और खर्च उठाकर उसे इंजीनियर बनाकर अमेरिका भेजा हूँ।
3: जी।
1: अब तो उसे वहाँ ग्रीन कार्ड भी मिल गया है, अच्छी खासी नौकरी है। बोलो, आपके पास क्या ऑफर है?
3: मेरे खास मित्र की पुत्री है, सौंदर्यवान है, सर्वगुण संपन्न है और स्नातक भी।
1: अच्छा, ये तो सुवर्ण में सुगंध हो जाएगी, हमारे भाग खुल गए। बोलो, उनकी क्या ऑफर है?
3: अपनी इकलौती बेटी के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हैं।
1: वो तो करेंगे ही, लेकिन माल यानी कुछ नकद?
3: नकद तो उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनका कहना है कि मैं दामाद ढूंढ रहा हूँ, बैल बछड़े नहीं खरीद रहा हूँ।
1: छोड़ो ऐसे भुक्खड़ रासों को, बड़े निकले हैं दामाद ढूंढने के लिए, लड़की के पिता होकर इतना अभिमान, ऐसे तो कई लोग आते हैं। मेरे बेटे जैसा दामाद तो भाग्यशाली को ही मिलेगा।
3: लेकिन मेरी मानो तो लड़की लाखों में एक है, पैसे की तो सिन्हल को क्या कमी है। यह लड़की यदि पसंद की गई तो सचमुच आपने कहा वैसे ही स्वर्ण में सुगंध।

0: सुगंध आ जाएगी।
1: ये सब तो बोलने की बातें हैं, सोने में भी कभी सुगंध आ सकती है। एक से एक सुंदर लड़कियों के पिता सभी अपनी बेटी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नकद की बात आते ही सब पीछे हट जाते हैं। आप ही बताइए, लड़के के पीछे कम खर्च किया है मैंने? मैं दहेज थोड़े ही मांग रहा हूँ। दहेज मांगना तो भीख मांगने के बराबर है, मैं तो पढ़ाई का खर्च मांग रहा हूँ। वो पैसा भी उनकी लड़की को ही जाएगा। भगवान की दया से मुझे दाल रोटी तो मिली जाती है। ये तो रिवाज जो चला आ रहा है उसी को निभा रहा हूँ।
0: और भी एक लड़की है, लेकिन बताने में कुछ संकोच होता है।
1: इसमें संकोच कैसा? कहने आए हो तो कही डालो, छाछ लेने जाते हो तो भगोना क्यों छुपाना?
0: बात वास्तव में ऐसी है जी कि लड़की कुछ शाम वर्ण है तथा ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है।
1: जी रंग, अरे अमेरिका में भैंस भी जाती है तो गोरी हो जाती है। रही पढ़ाई की बात, तो अमेरिका में उसे नौकरी थोड़ी ही करनी है। हा? अच्छा, नगद की क्या तैयारी है, कुछ कहिए।
0: नगद नारायण की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, कोरा चेक ही देने को तैयार है। कोरा चेक? हा?
1: कोरा चेक?
0: जी हाँ।
1: हा, ये हुई ना कुछ काम की बात, इसमें आप संकोच क्यों कर रहे थे? इस जमाने में तो ऐसा है ना, जो शर्माता है वो ही पछताता है। अरे रेखा की माँ, जरा चाय तो बनाओ। देखो स्नेहल के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है।
2: आई भैया, लड़की का बाप क्या करता है?
1: अब तो ये लप्पन छप्पन कहाँ करने बैठी, कोरा चेक दे रहा है तो धंधा भी अच्छा ही होगा।
2: लड़की कैसी है?
0: भाभी जी, लड़की वैसे तो ठीक है, कुछ शाम वर्ण है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं ना कि अमेरिका में जाने के बाद वर्ण खुल जाएगा।
2: पढ़ाई क्या की है?
0: अपना नाम अंग्रेजी में लिख सकती है।
2: क्या अपना स्नेहल ऐसी लड़की पसंद करेगा?
1: तू चुप बैठ, तू कौन सी सुंदर और पढ़ी लिखी है मुझे मालूम है। तूने ही बच्चों को मुझे लगाया है, उसे कहाँ नौकरी करनी है, पता लिखना आया तो बस।
2: लेकिन लड़की का स्नेहल से कुछ तो मेल होना चाहिए, कुछ तो जोड़ी जमनी चाहिए।
1: लड़की पसंद करने के लिए वो थोड़े ही यहाँ आएगा, हम उसके माँ बाप हैं, कुछ दुश्मन थोड़े ही हैं। देखिए हजारीमल जी,
0: जी
1: आप लड़की की सुंदर रंगीन तस्वीर बनाकर मुझे देना।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं उसे अमेरिका भेज दूंगा। देखो कम से कम तस्वीर तो आकर्षक रहनी ही चाहिए, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे अस्वीकार करता है।
2: ये सब तुम जाने दो, मैंने तो तुम्हें सजग कर दिया है, बाद में कुछ हुआ तो मुझे मत कहना।
1: अरे तुम चुप बैठो, तूने ही बच्चों को बिगाड़ दिया है। मालूम है कोरा चेक जो मिलने वाला है तुम्हें क्या मालूम, तुम तो बस खर्च ही करना जानती हो। इतना अच्छा मौका यदि हम जाने दें तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। हजारीमल जी,
0: जी
1: आप चिंता मत कीजिए, एक रंगीन तस्वीर ला दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
0: बहुत अच्छा।
1: और हाँ, वो कोरा चेक मुझे देकर विवाह की तैयारी करवाइए।
0: जी हाँ, तो फिर मैं चलूं?
1: हाँ हाँ, शुभ शीघ्रम। आप लड़की वालों से तैयारी करवाइए।
0: जी
1: मैं स्नेहल को बुला लेता हूँ। हेलो, कौन? हजारीमल भाई, करोड़ीमल बोल रहा हूँ, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, 4 बजे स्नेहल आ रहा है, रात में मिले थे। हाँ हाँ, अरे जोरों से चल रही है। हाँ क्यों ना हो, इंजीनियर दामाद जो ठहरा, स्वागत भी ऐसा होना चाहिए कि लोग दांतों तली उंगली दबा दें। अच्छा लेकिन लड़की को याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, स्नेहल देखते ही मोहित हो जाए। हाँ अच्छा, वहीं मिलेंगे।

0: हमें आकर आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, अभी तक विमान क्यों नहीं आया? क्या विमान में कुछ?
1: अरे शुभ अवसर पर ऐसा नहीं सोचते। अब वो देखो क्षितिज पर अपना विमान आ रहा है।
0: अरे
1: अभी से कहां उठ गई, अभी तो 10 मिनट लगेंगे। लेकिन ये लड़की वाले नहीं आए, हजारीमल जी का पता नहीं।
0: आते ही होंगे, वो तो समय पर आ जाएंगे। देखो विमान उतर रहा है, तुम हार उठा लो, मैं अन्य सामग्री उठा लेती हूँ।
1: अरे विमान को

0: रुकने भी तो बस अब यहाँ से आगे हमें नहीं जाने मिलेगा।
1: वो देखो वो दरवाजा खुला, लोग निकलने लगे। वो गोरा युगल कैसा हाथ में हाथ डाले उतर रहा है। एक दिन हमारा स्नेहल भी इसी तरह उतरेगा। वो देखो अपना स्नेहल, वो रहा। हा?
0: हा?
1: वो हमें देखकर हाथ उठाया।
0: अरे जरा ठीक से तो देख, वो तो कोई गोरी युवती का साथी है। वो तो उस तरफ जा रहा है, वो स्नेहल कैसे हो सकता है?
1: वो देखो वो अकेला युवक उतर रहा है ना, वही अपना स्नेहल है।
0: अरे तू ही पहचानने में धोखा खा गई, अपना स्नेहल तो उससे ऊंचा है। यहाँ था तभी भी गोरा था, और वहाँ जाकर और भी गोरा हो गया होगा। वो तो
1: सब लोग उतर गए, अब तो परिचारिकाएं तथा विमान चालक भी बाहर आ गए।
0: क्या बात है, अपना स्नेहल क्यों नहीं आया? क्या वो विमान तो चूक नहीं गया?
1: नहीं नहीं, स्नेहल विमान नहीं चूका, आप निशाना चूक गए। अरे वहाँ दूर क्या देख रहे हैं, यहाँ सामने देखो कौन खड़ा है।
0: अरे बेटा स्नेहल तू कब उतरा? अरे मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं।
2: पायला को पिताजी,
0: सुखी रहो बेटे, सुखी रहो।
1: आपकी आंखों ने उसे पहचान लिया था, लेकिन कोरे चेक के लालच में आपका दिल उसे अपनाने को तैयार नहीं।
2: पिताजी, माँ, ये मेरी पत्नी मारिया।
0: पत्नी?
1: पत्नी स्नेहल, ये तू?
2: पिताजी मैंने अपना योग्य जीवन साथी खोज लिया है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसका नाम मीरा रखा है, मीरा। मरिया ये मेरे माता पिता है, उनके चरण छू, माय पेरेंट्स।
0: स्नेह ये तू किसे उठा लाया है? उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है?
3: What's all this? ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कहते थे तुम्हारा डैडी मम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड है।
2: Yes.
3: पर ये फर्क काय का? ये जातवाद क्या करता है? ये तो गुस्सा काय को? Oh Christ!
2: Oh, oh nothing, darling. कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो बहुत खुश हो गए हैं दरअसल। They're very happy. You express your obedience.
3: पिताजी माताजी, मैं जीसस को सामने रख के प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको ओबे करूंगी, आपको बहुत बहुत सेवा करूंगी। ओह हाय रेखा, हाउ डू यू डू? हम तुम्हारे वास्ते बहुत अच्छा हस्बैंड भेजा था।
2: हाँ पिताजी, माताजी, ये हैं मेरे बहनोई, अपनी रेखा के पति। वहाँ अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे हैं, यहाँ रेखा के साथ ही पढ़ते थे, तब से इन दोनों में प्रेम हो चुका था। बड़े चारित्रशील और गुण संपन्न हैं। आप इन दोनों को वरमालाएं पहनाएं। रेखा रेखा, पिताजी को मालाएं दे दो।
3: That's good. तैयार होकर हमारे बाजू में खड़ा हो जाओ, पिताजी हम सब का गालन करेगा।
0: ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, होश संभालिए। अब यहाँ लोगों को तमाशा दिखाना है क्या? जल्दी से दोनों को मालाएं पहना दीजिए ना।
4: मुबारक हो करोड़ी मल जी, मुबारक हो आपको, गोरी बहू मुबारक हो, होनहार दामाद मुबारक हो। आपने तो कोरा चेक मांगा था, बदले में गोरा चेक पा लिया।
0: हजारी मल मैं मर गया, ये क्या हो गया? अब मेरा कोरा चेक।
4: जो हुआ सो अच्छा ही हुआ सेठ जी, उस लड़की का बाप तो आज सुबह ही जेल का मेहमान बन गया है। मैं तो तस्कर निकला, स्मगलर।
1: तब तो रेखा भी हमारे पास से चली जाएगी, फिर हमारे पास कौन रहेगा?
3: ओह मामा, डोंट यू वरी, उसकी आप चिंता मत कीजिए माता जी, जीसस ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया।
2: हाँ मामा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका प्रबंध भी हो जाएगा। वो ऐसा है कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। अब फिर आपका पौत्र तो आपके पास ही रहेगा।
3: लुक शेरल, लुक व्हाट योर डैड इज डूइंग, ही इज फॉलोइंग। कैच हिम,
2: पिताजी, पिताजी,
0: मैं लुट गया, अपने आप को, मेरा कोरा चेक, मेरा कोरा चेक,
2: पिताजी।

कोरा चेक हवा महल के अंतर्गत अभी आपने डॉक्टर चंद्रकांत पटेल लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुत करता पुरुषोत्तम दारभेकर।

कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स से। इसे गाया है ज्योति नूरा ने, गीत लिखा राजशेखर ने, संगीत कृष्णा सोलो का है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त

0: नए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे।

0: लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेन जी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला, और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवली,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
1: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है।

0: के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल

असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म राजकुमार के इस गाने के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने। संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जी

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर कांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की

जिनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल गया।

भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
1: अटकन मटकन दहेजे टोकन भम्मड़ दुस्ता थूकते गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।

फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था, और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत।

फिल्म गीत गाता चल का ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म थी तपस्या।

ये गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था।

0: आशु गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नजारों में, इन नजारों में खो गए हैं साथ तुम्हारे, दिल में जो समा बांधा है दिल ने, देखते रह गए हैं नैन हमारे।

परिंदे उड़ चली है आंखों से, जाने कैसे बदला है समा। दे कर के दर्द दिल हमी से पूछते हो, दिल है कहाँ और दर्द है कहाँ।

0: दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा।
1: बस तुम्ही से रोशन है मेरे अफसाने का नाम, क्या नहीं मालूम तो जान लो। सुन के पुकार आ गए हैं जान हथेली पर लेके, अब तो दीवाने का कहा मान लो।

हर सो दिखाई देते हो अब आसमानों में, चांद तारों में, प्यार भी तू बाहर भी तू नजर में है और तू ही नजारों में।

आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है, एफएम बैंड 14.6 MHz पर। 11 बजे सुनिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार कुछ ही पलों में।

0: है विविध भारती राष्ट्रीय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईए डीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरीडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है FM बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बेला के फूल। बेला के फूल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विद्या राउत का नमस्कार।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत SD बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बीवी और मकान फिल्म का गीत। गीत लिखा था गुलजार ने, गायक तथा संगीतकार थे हेमंत कुमार। आइए अब सुनिए मुकेश का गाया आनंद फिल्म का गीत। गीत के बोल योगेश के, संगीत सलील चौधरी का है।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

बेला के फूल कार्यक्रम के अंत में सुनी ही ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल गुलशन बावरा के संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

इस गीत के साथ ही आज का बेला के फूल कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए विद्या राउत को। आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है, आइए सुनिए मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पिछले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्र का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस, जो 1 डिग्री सेल्सियस से कम था। आने वाले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान 43 तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना रहेगी। मौसम का हाल समाप्त हुआ। FM बैंड 100.6 MHz वर आकाशवाणी नागपुर सह हे विविध भारती केंद्र आहे। रात्रीचे 11:30 झालीत। आमच्या केंद्राचे आजचे कार्यक्रम संपलेत। पुन्हा आपली भेट होईल उद्या सकाळी 5:55 शुभरात्री। जय हिंद।